0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का वक्त खत्म हो चुका है। इस मुकदमे का फैसला अगले महीने की 18 तारीख को सुनाया जाएगा।
1: ओ, मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने?
2: तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो, अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूँ।
3: रेडिएशन, द नंबर वन स्टेशन फॉर द पागल एशियन। पागल एशियन,
4: व्हाट द, यू ऑलवेज से no one has sent in or referenced a line more pervy or lecherous than that one. That's what I'm trying to say. And you know, you can go to the Punjabi butchers, whatever it is, if you eat meat in a restaurant, and you know there's always someone horny there, yeah? Right at the end, right, looking over, oh, looking at your girlfriend, whatever it is, man, this is too much. Anyway, Mukaddama, Jazzy B, Sukhchindra Shinda, Local Attraction. And Radiation, the number one station for the Asian invasion. Let me hit you with this, yeah. Brain is fully firing up. It's Diary by Badam. Here we go.
3: Radiation, the number one station for the Pagal Asian.

0: मेरी माँ ने मेरे को कैलकुलेटर दिया। हाँ, कोई एम ही कैलकुलेटर नहीं सीखा, और टेक्सस इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर सीखा, बड़ी प्रोफेशनल थी। मैं दो तीन महीने वास्ते मंगता सीखा, चंगी तरह माँ ने तंग करता, माँ ने पता सीखा, मेरी आदत नहीं चीजा मंगने। जो माँ ने मैंने इतना बड़ा तोहफा दिता कैलकुलेटर, मैं फटाफट जाके उन्होंने चप्पी मारी, पता उन्होंने की किया, और वापस मैंने चप्पी मारी। हमेशा मैं सोचता सी मेरी माँ मैंने प्यार नहीं करती, मेरिया छोटिया पैरों हमेशा चप्पिया मार रही थी, पर मैनू नहीं।
1: I told my girl I was on radiation.
2: मेरी कुड़ी, ओदी सेहत ठीक नहीं, अद्धी रात मिनी स्कर्ट पा के क्लबां च चीका मार के टपदी आ।
3: कोई ना वीरा, असी डिजायर्ड इफेक्ट नु सदूंगे।
4: उपड़ वाले का ना जप्पो, किसी ने मैनू बुलाया, 500 पाउंड मैनू दान कर लो, नाल सारे तेरे दुख दूर हो जाऊंगे। तेरी पार्टी हार्ड कुड़ी दा कमरा किथे आ?
2: इत्थे आ उपड़, 10 दिन च एक रोटी दी बुड़की खाई नहीं, बस बाड़ कर चिप्स चबी जांदी आ।
4: अच्छा, इनिशियल डायग्नोसिस, शक्ल इज रादर पैड़ी and top lip very hairy, 2000 pound daan kar lo, mere naal jappo,
5: the power of radiation compels you, random guys of Soho Road compel you, pearly uncles with x-ray glasses compel you, to leave this girl's forsaken body, so she's free to dress sensibly and dance to proper music on
6: radiation, the number one station for the Bagel Asian.
0: Good morning, brothers and sisters. This is Davin Radiation, the number one station for the Asian invasion, pretending not to be a tired presenter. That's what I'm trying to get at. Absolutely worn out. Do you normally just lay down and you think, what was the point of going to sleep? Because your body's literally just had enough. That's what it is. And I think that's stress. And stress is not cool whatsoever in any regard, yeah. And it all depends on how we manage it. Even if you look over to your bookshelf and there's a book called Managing Stress, which you've never ever read, there you have it. Many books on the shelf which I haven't read, and I'll get around to doing that. That is the plan, eventually, to do these things. But yes, Sunday the 27th of September. I'm not talking properly, I'm exhausted. And as I get myself sorted out, I let the caffeine element in the tea kick in, because there is an element of caffeine in there. And that should sort of like get me sort of like leveled off. So just panicking, running around. Listen to this, yeah, for an amazing vocal. Right, check this out. This is sent off by 3Q Records, 3Q Media. This one is Tank, Bobby Sava. Here we go. On Radiation, the number one station for the Asian invasion.
6: The number one station for the Asian invasion.

0: 500 पाउंड में दान कर लो ना सारे तेरे दुख दूर हो जाऊंगे। तेरी पार्टी हार्ड कुड़ी का कमरा कित्थे आ?
1: इत्थे आपड़ 10 दिन च एक रोटी दी बुड़की खाई नहीं, बस बड़कर चिप्स चबी जांदी आ।
0: अच्छा, इनिशियल डायग्नोसिस, शक्ल इज रादर पैड़ी एंड टॉप लिप वेरी हेरी। 2000 पाउंड दान कर लो, मेरे नाल जप्पो।
2: द पावर ऑफ रेडिएशन कंपेल्स यू, रैंडम गाइस ऑफ सोहो रोड कंपेल यू, पर्ली अंकल्स विद एक्स-रे ग्लासेस कंपेल यू to leave this girl's forsaken body so she's free to dress sensibly and dance to proper music on
3: Radiation, the number one station for the Bagel Asian. Bagel Asian.
4: Hi, yeah, I just left the date and I don't know, am I asking for too much? Like, this guy was really cute and he was a musician.